0: हेलो
1: हेलो,
0: आप ग्राम आ चुके हैं?
1: आप
0: कौन आउस है? डॉग विथ यू
1: यो आप ताजी हो ना समानी है कि मैं भी बैठ 20 इयर्स में मैं को हॉस्पिटल नहीं था मेरी आने साई मैं मैं मद्रा मिड्रू बैठ नहीं मैं चेस्ट नहीं है नहीं मुंबई 2 मंथ्स मैं ना मैं समय मुझे ना मैं मैं मुझे इंडी मैं मिट्टी का इंजीनियर मार्ग में से एंड मैं को बेबी आम वन आंदो को हॉस्पिटल मुझे मिट्टी का मैं मुझे से मोर का मार्ग ना मिट्टी जाते एविट मैं मैं मिसाह एंड मैं मैं मिसाह जिस ना नाते यार ये नो ना मेरे बेबी
0: एंड जी सेसे नो ऐया ना उन समय वो ड्रू
1: एंड वो नाम मैं को 2 मंथ्स नहीं स्टार्टी बना मैं समय मिट्टी म ndi namu akwantim jamanda mse lezi sana sema dia wo mikuru mjini yabako akina yekudira ni bia mse kama yabako hospital ndi mitika yimi na mse moye program na mse saria ni bisa se bia no ana se ya yebe na namu be
0: na abra na biwa oso pa no na uhu sa zusansu yi
1: oh ndi se na meka be emedia wo mebetu kra ka ho ni na ko ni mzu
0: Okay. And yeah, oh yeah, see the dog back from why? I can't tell you. Yeah, that's a pass.